0: जस्तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो झमेला।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

दीक्षित लय सुखदेव ले गंगा जी को जल अत्यंत पवित्र पानी। जो कपिल देव आश्रम गंगा सागर सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार सारा तीर्थ जब गंगा सागर में जब जान तेस दिन में जम्मा महाराज भगवान कपिल देव एक रात दिन जी बक्सन जम्मा 24 घंटा और टाइम सारा सुती बक्सन तर एक रात दिउजे का बेला में सारा 33 कोटी देवता दर्शन करना मागे संक्रांति का दिन में भगवान कपिल को सान्निध्य में पुग्ने होना को कारण उन्हें कपिल देव भगवान को दर्शन करी गंगा सागर को संपूर्ण विश्व भरी को नेपाल भारतवर्ष भरी को अपवित्र पावन जल ती समायोजन भएको छ ती गरेर स्नान गर्नुस् पवित्र हुनुस् शरीर पवित्र बनाउनुस् यही मूल सिद्धांत तो बन राजा परीक्षित सुखदेव ने बताई बस बाकी अंश को लगे तपाई के सुन्न चाहिए बस भर महाराज परीक्षित का प्रतिमा सुखदेव स्वामी ने बताउन भो रही सगर नामिर का राजा का छोरा पुलमा जब राजा का ना सगर हुन भो जसमान अंशमान दिलीप भगीरथ उनका वंश में भरद्वाज उनका वंश में महान रघु नाम का राजा पैदा भएका छन्। महाराज रघु को कुलमा खटवांग खटवांग का कुलमा रघु रघु भनेको माछा को कुल उनका वंश में अज अज नाम का राजा का छोरा दशरथ उनका तीनटा रानी में छोरा न भएर छोरा पाउने एक ही प्रयोजन गराउँदै हुनुहुन्छ राजा दशरथ भन्ने सम्बन्ध को कथा यस अध्यायबाट बताउनु भयो। यसै प्रसंगमा उनका ऋषि प्रणाली एक दिन महान प्रतापी अर्थात दशरथ राजा को तीनटा रानी छोरा थिएनन् एक एक गरे एक एक को प्रताप बाट पायस र चरु आयो आई सके पछि जेठी महारानी का गर्भबाट एक एक को प्रताप ले पुत्र पैदा हुनु गो साक्षात्कार भगवान पर ब्रह्म परमात्मा को सातों अवतार जय बोलो राम अवतार भगवान को अने रामचंद्र प्रभु प्रादुर्भाव हुई बक्सु कई कई बच्ची का गर्भबाट भरत सुमित्र पायस का मत बाट इंजीर को मत राम मा लक्ष्मण भारत मा शत्रुघ्न मिलन जानु भो यसै प्रभावले गरिकन राजा रामचंद्र परमात्मा परमेश्वर जगत को नारायण आज जनकपुर धाम मा सवारी हुनु बला अति बला विद्या लक्ष्मणले पनि पढ्नु जनकपुर धाम मा गएर सीता माईलाई शिवधनु तोडेर विवाह गर्नु उर्मिलाका साथमा लक्ष्मणले मांडपीर सुरतकृति का साथमा श्रीध्वज राजा की छोरी को साथमा क्रमशः भरत र शत्रुघ्नले सारा विवाह भइसकेपछि रामचन्द्र परमात्मा दरबारमा सवारी हुनु यहाँ पातालो कथा हुन्छ महाराज दुई अध्यायले सारा सक्नु पर्छ है त यसै कारणबाट रामचन्द्र परमात्माले बडो रमाइलो शासन घरमा विराजमान हुँदा पिताजीले रामलाई राज्य दिने अभिप्राय विचार गर्नु तर सौतने आमाले पूर्ववत थाकी दुईटा वरदान माग्नु रामलाई जंगलमा बास 14 वर्ष मेरो छोरो भरतलाई राज्य गद्दी यसो हुँदा राजा दशरथ मूर्छा पर्नु रामचन्द्र जंगल जान तयारी हुनु पिताजीको वचनलाई तयारी गर्दा सारा पूर्ववासीले भन्नु नजाऊ वनमा राम सीता लक्ष्मण।

महाराज परीक्षित सुखदेव ले बताओ नो भयो। महाराज परीक्षित अब आखिर क्या विधवा राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी ने बड़ा प्रेम शासन आज्ञा कर वो अल जंगल पट्टी को सवारी हो वो से प्रभाव बाटा आखिर में जंगल पट्टी को परमात्मा को सवारी राजा दशरथ को मृत्यु भयो। महाराज परीक्षित द्विटा छोरा मामली द्विटा छोरा जंगल में राजा दशरथ को क्रिया भएन। सुन्नुहोस् रामचन्द्र जस्ता जब छोरा लक्ष्मण र भरत शत्रुघ्न जस्ता छोरा पाउँदाखेरिमा बाउचैको क्रिया भएन अनि अरूले छोरा पाएर सुखमन केरी भन्ने कृष्ण जस्ता बलराम जस्ता छोरा पाउनेवाला पाता कसेर थुनिनु पर्छ अहिले अब जब सुख कसरी हुन्छ भन्नु छोरो पाएर। राजा परीक्षित यसै सन्दर्भमा दशरथ राम गरेको राजा